0: आज तुमको वाह भी
1: तीम ने रसोम नी इसा तापका दे मंदीकेल तापका दे मंदीकेल निवाले फितु लपन लकानो रन समाई ता फाउला ने मिचा वचले चीर का पोका रन सारे नाम ले उल इसना लाव सो ओजोम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा चौता का मिचो याद का पोका वो देसामे फाउला ने ताल ले फितु लपन लकानो सो वे अमान ले तेले स्टार्स पति मानम ले वे चिरामान तो कोन्या पिन पिचेसन तार ने यमुलाना amin'ny amahanan' le olana retelestage fa ijiro kapoka ve nyfahaolana tokony mandinika mihitsy malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana toy jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: क्लास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रजकले मंदे मंदी तनाम मत आकाश के आराम पिसले तम सब तुम चुपला रहे न्याना का तीन न्याना का काम रहे इतनी न्याना करे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के जान को रिस्क के जान को वा ये जाना दे जान मत